और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, रबी सानी की 25 और अक्टूबर की 8 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने इलाके अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वजीर आजम ने बैन अल-अक़वामी कानून की पासदारी और अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और बेलारूस की सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी ने रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई तआवुन के दायरे कार पर तबादला ख्याल किया है। बहरीन के वजीर खारजा पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में हैं।
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: अरे यार, ये रेडियो क्यों नहीं लग रहा?
1: अरे भाई, दोबारा ट्राई करो।
0: अरे पता नहीं सिग्नल इतने कम क्यों है।
2: बोला का यार, वो जरा 101 लगाओ।
0: अरे वही लगा रहा हूँ। लो, लो, लो, लग गया।
3: बस किसी को पाने की कोशिश कीजिए तो वो मिल जाता है। अब तो जो भी रेडियो पे आता है मुस्कुरा के आता है। आइए मिलके मुस्कुराते हैं FM 101 के साथ।

0: यार आप लोगों ने शोर काम नहीं करना, मेरा रेडियो सुनने का टाइम हो गया, बस कर दो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मजाक बना के रखा है, इतना शोर रेडियो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, मैं तो आ गया हूँ गाड़ी में।
1: अब चाहे सबके साथ सुने या अकेले में, रेडियो तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके फेवरेट शोज यहीं पर तो लगते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट यहीं पर तो आते हैं, तो बस सुनते रहिए FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar.
2: We'll be right back after this short commercial break.
3: Stay tuned.
2: We'll be right back after this short commercial break.
4: जल्दी में कहाँ जा रही हो?
5: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक के टाइम भी खत्म होने वाला है.
4: बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
5: इन्वेस्ट पार्क?
6: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
5: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
4: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
5: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है.
7: 101 FM.
8: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101. All the way live from the
0: federal capital city of Pakistan. This is FM 101.

Van Vanu.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वजीर आजम ने बैनुल अक्वामी कानून की पासदारी और अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और बेलारूस की सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी ने रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई तआवुन के दायरा कार पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला बैन अलावा T20 क्रिकेट मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
3: This is FM
4: 101. I love FM 101.
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You're listening to FM 101, a bale bale o shower shower.

मिल दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: This is FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

listening to FM 101, a bale bale o shower.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101, naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji, koi shak hai kya?

0: सुबह के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने तमाम वफाकी वजारतों को नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुतल्लिका आदाद व शुमार की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और बहरीन ने कसीर शोबों में दो तरफा तआवुन मजीद मुस्तहकम करने के मुश्तरक अज़्म का अयादा किया है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमारी वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़वारिज के 4 अहम दहशतगर्द कमांडर समेत 9 ख़वारिज हलाक कर दिए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आलमी सतह पर जहरीली गैसों के अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: Drive carefully, okay?
1: Okay.
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: Big Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101. 101.

शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। बुशरा मलिक से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वफाकी वजारतों को नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुतलका इदाद-ओ-शुमार फराहम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और बहरीन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

This is FM 101.

0: Chemistry sucks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: दे पेपक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: दिस इज FM 101
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ये मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव जो वीरान तो न था।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में बहरीन के साथ तआवुन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म पर जोर दिया है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तिलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान 9 ख़वारिज हलाक कर दिए हैं।
1: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

आगे भाई आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तान जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगुदा साहिवाल AJK मरियाजाद कश्मीर पाकिस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए, ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को। और क्योंकि ये इंटरनेशनल है तो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इस वक्त हम सुने जा रहे हैं दुबई, अमान, अजमान यानी के तमाम तर मिडिल ईस्ट में, USA यानी के टेक्सस, शिकागो, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, और अगर हम यूरोप की बात करते हैं यानी कि इटली, रोम, फ्रांस और उससे भी आगे जहां जहां पर www.radio.gov.pk के थ्रू आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए, हमें सुनने के लिए। साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 2 बजे तक। बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। और मेरी उम्मीद और मेरा यकीन और मेरी कोशिश और मेरी काविश और मेरी ख्वाहिश यही है कि वो सब कुछ प्रोग्राम में हो जिसके लिए आप पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं। और चूंकि अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि सैटरडे का शो मुझसे मिस हो जाता है, खास तौर पे जो इवेंट्स का सीजन चल रहा है ना, उसमें चूंकि मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी मुल्तान में, कभी भावलपुर में, कभी क्वेटा में, कभी गवादर में, कभी कहीं पर, कभी कहीं, मजदूर आदमी हूँ, नौकर आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो जहां पर नौकरी का मौका मिलता है, जहां से 1500-2000 रुपए की कॉल आती है, हम वहां पर चले जाते हैं। जाहिर है पाव आटा तो कमाना ही है ना। सो इसलिए सैटरडे का शो मोस्टली मिस हो जाता है मुझसे, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रेगुलर हो जाऊं। लेकिन थर्सडे का शो मैं लाजमी आप लोगों को देता हूं ताकि जो एक हफ्ते का गैप आप लोगों का और मेरे दरमियान होता है, वो गैप जो है वो किसी तरह से भी मजीद तूल ना पकड़े, मजीद तवील तवालत जो है वो इख्तियार ना करे। सो खैर जनाब, 12:07 मेरा आपका साथ 2 बजे तक है प्रोग्राम में, वो सब कुछ है जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जिक्र अस्कार भी करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मुश्तबा भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक टेक्स्ट करके जरा बताएं, ताकि मैं चाह रहा था कि मैं प्रोग्राम के आगाज में ये बात करूं ताकि किसी को ये अभाम या शिकूक व शुबात ना रहे कि मैं प्रोग्राम के आखिर में ये बात इसलिए करके गया हूं कि बस प्रोग्राम करके फिर मैंने वाइंड अप कर दिया और फिर मैंने कॉल नहीं लिए। तो अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे एक मैसेज कीजिए ताकि मैं फिर गुफ्तगू कर सकूं, उसके बाद फिर हम अपने दूसरे जो एक नॉर्मल के रूटीन का प्रोग्राम है उसके जाने बढ़ता है।

मेरी बड़ी अदब एहतराम मोहब्बत चाहत से ये आप लोगों से दरख्वास्त है, कोई भी प्रेजेंटर आप लोगों के लिए आता है, अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जाहिर है जो कि यू नो दूसरे साइड पे बात को ले जाएंगी, वो बात करना यहाँ पे मकसद नहीं है। सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करके आगे निकलूंगा कि इकोनॉमिकली कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है उसको, माशी तौर पर उसको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं ना कि कोई प्रेजेंटर यहाँ पर आ रहा है तो वो इस लालच में आ रहा है कि उसको कोई माशी तौर पर बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो अगर यहाँ पर आता है अपने गम भुलाकर, अपनी परेशानियां भुलाकर, अपनी टेंशन भुलाकर आता है, आप लोगों के लिए परफॉर्म करता है, आप लोगों को बेहतरीन शो देने की कोशिश करता है, इंसान है, गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि किसी शख्स की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई कि अगर उसको कह दिया कि भाई नहीं आप जो कह रहे हैं कि मैंने गलत कहा है मैंने सही कहा है, अगर किसी की शान में इतनी गुस्ताखी हो गई है और कोई गैंगड अप हो के फिर कॉलर्स जो है वो उसके प्रोग्राम को खराब कर रहे हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम में जाके उसको जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं तो तमाम तर प्रेजेंटर्स से भी कहूंगा जितने प्रेजेंटर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा आदमी आए जो आपके प्रोग्राम में किसी और आरजे को डिस्करेज करने की कोशिश करें, उसी टाइम स्नैप करें, उसी टाइम कॉल बंद करें, ऑन एयर टाइम बहुत कीमती है। सो मैं आज भी दावत दे रहा हूं कि किसी को अगर फीडबैक देने का बड़ा शौक है, किसी को शायरी दुरुस्त करवाने का बड़ा शौक है, तो मेरे प्रोग्राम में कॉल करें, मैं 2 बजे तक यहां पर बैठा हूं, मुझे कॉल करें, मेरी शायरी दुरुस्त करवाएं जरा, और गैंगड अप होके आए। आप जिस तरह गैंगड अप होते हैं, मैं आपको बल्कि टाइम इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैंने कहा ना कि मैं प्रोग्राम के एंड पे बात कर जाता तो फिर शायद लोग ये कहते कि हाँ भाई आखिरी लम्हे में बात करके अल्लाह हाफिज करके चला गया, मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसलिए बात की है ताकि पूरे 2 घंटे आपके पास हों गैंगड अप होने के लिए। हम ऑन एयर तो बात करेंगे ही और उसके बाद फिर जो है ऑफ एयर भी बात करेंगे, ऑन एयर जितनी भी तवील बात हो कोई मसला नहीं है, ऑफ एयर उससे भी तवील बात होगी, ठीक है, फिर खुल के बात करेंगे ना, फिर सिर्फ ऑन एयर नहीं रखेंगे फिर ऑफ एयर भी रखेंगे इसको, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। सो एंजॉय करें यार जिंदगी में, एक बंदा आप लोगों के लिए आ रहा है, एंजॉय कर रहा आने के लिए आ रहा है, अपनी पता नहीं कितनी टेंशनें छोड़ के, मसाइल छोड़ के, मसले छोड़ कर वो यहां पर आ रहा है, आपको इंटरटेन करने के लिए आ रहा है, और आप जो है वो इतनी छोटी सी बात जो है वो किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट गुड। 12:16, मेरा नाम जिशान नासिर है, मुश्तबा भाई आप यकीनी तौर पर सुन रहे हैं, आप यार खुश रहें, आबाद रहें, और आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी तरह डिस्करेजमेंट महसूस करने की, डिस्करेज होने की, बिल्कुल भी आप डिस्करेज मत होइए, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर बोलते हैं, सो इसी तरह बोलते रहिए और खुश रहें, आबाद रहें। ये आप कर मेरे रابطے का नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे कॉल करेंगे, उसके अलावा फेसबुक से भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और इंस्टा से भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, सारा आपका फीडबैक शामिल करेंगे, कॉल्स भी लेंगे, आज ज्यादा लेंगे और बताएं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जिसका आप वेट कर रहे हैं उनको भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। आज एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज भी है एज फार एज द मीडिया इज कंसर्न, मुझे जाती तौर पर बड़ा रंज है उस खबर का, उसको भी हम प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इससे मिलता जुलता वाकया मेरे साथ एक दफा टीवी पे भी हो चुका है। मैं एक दफा मॉर्निंग शो में गया, वहां पे मैंने एक शेर पढ़ा, तुम शर्मो हया के तकाजों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस शर्म देखा है, देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार मखाने में खुदा देखा है। अब ये अगर आप सर्च करेंगे तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के नाम के साथ ही मंसूब इसको किया जाता है, ठीक है। सो अब हुआ ये कि जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, दानिश्वर थे, और उन्होंने कहा कि ये जो नौजवान ने शेर पढ़ा है ये डॉक्टर इलामा इकबाल साहब का नहीं है। अब वो जो एंकर थी वो बेचारी एकदम एम्बैरस और वो परेशान सी हो गई कि अब मेरा क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने बड़ी तहमल से उनकी बात सुनी और जब मेरी बारी दोबारा आई तो मैंने उनसे कहा कि साहब बात ये है कि अब हमारे पास किसी शायर के शेर को जांचने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम जो है वो उससे मुलाकात कर लें, या फिर हम उससे मंसूब जो मवाद इंटरनेट की सूरत पर हमारे पास मौजूद है हम उससे उसको क्रॉस चेक कर लें। तो अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो ये डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के नाम से ही मंसूब आ रहा है, तो एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका उनसे मुलाकात है वो अभी मुमकिन नहीं है, तो जब आप मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगा हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे तो फिर वहां पर हम पूछ लेंगे कि भाई ये शेर आपका है या नहीं, अगर उनका हुआ तो फिर आप माजरत कर लीजिएगा, ना हुआ तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा। उसके बाद फिर उनको समझ नहीं आई कि अब आगे मैं क्या गाऊं। एनीवे जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं प्रोग्राम का पहला गाना, और मुझे भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, अपने प्रोग्राम्स पे आए, खुल के प्रोग्राम करें, खुश होकर प्रोग्राम करें, कोई ऐसा मसला नहीं है।

0: Alright, 0511111001, that is the number to dial on. पहली कॉलर हमारे साथ या पहले कॉलर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो.
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन बात करें, कहां से?
1: सायरा बात करी, बेरिंग क्लिफ
0: से. सायरा, सायरा क्या हाल है यार, तुम्हारा माइक कौन सा, बोलो.
1: मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है. लेकिन इतने ना बोले, इतना
0: करे गुस्सा,
1: पहले भी हाई हो गया था.
0: नहीं नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा यार, बीपी बिना बिल्कुल नॉर्मल कह रही है. इतना गुस्सा ना करे, बीपी हाई हो जाता है. नहीं यार, बीपी हाई नहीं होता है. मतलब भाई, बात सिर्फ ये है कि कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन वो खड़े नहीं होते हैं. उससे बेहतर है कि वो बैठ जाएं. तो कुछ हमारी तरह के, मैंने कहा ना कि हमने जो दोस्ती के असूल सीखे हैं वो सीखे हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर से. सो बड़ी सिंपल सी बात है. खैर सायरा, आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ में.
1: कुछ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है.
0: अच्छा,
1: लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए. आपने जो कहा ना, नहीं कहना चाहिए. वो पढ़े उन्हें कितनी बार शायद उसको पढ़ा हो, खुद शायरी करते हैं, तो अगर उन्हें पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा होगा. पहले तो बहस करने की जरूरत ही नहीं
0: है. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल
1: सुनते हैं, हमारा काम है उनसे सीखना.
0: देखिये बात बड़ी सिंपल सी है. देखे फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पे कंप्यूटराइज मशीन तो नहीं है ना. गलत पढ़ा जा सकता है भाई, उसने गलत पढ़ा, आपने बता दी, बात खत्म. ये जो गैंगड अप होकर होने वाली अप्रोच होती है ना, ये कोई, ये तो मैं 19-20 साल का था, पता नहीं कोई पुराना जिशानियन यहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा, उसको याद होगा. एक रेडियो चैनल पे बैठ गई, मेरे साथ किसी ने करने की कोशिश की थी. सो आई टुक देम टू द क्लीनर्स. ये मेरे साथ तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा ही मत. मुझे ये बताएं कि क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गाना शाना सुनाएं यार.
1: गाना तो मुझे नहीं आता.
0: अच्छा अच्छा, बाय द वे इंस्टा पे आज हम एक एक्टिविटी खेलते हैं बड़े मजे की, मैं वहां से सवाल पिक करूंगा ऑब्वियसली. अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिखिए जिशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26. यहां पर जाइए, आपका कोई सवाल है मुझसे तो जरूर कीजिए, कोई मजेदार सवाल होने वाला है तो आप जरूर कीजिए. और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा आपका सवाल है जो कि आप चाहते हैं उसको मैं आंसर करूं तो जरूर कीजिए, मैं वहां से पिक करूंगा ऑब्वियसली. अब सवाल तो बहुत सारे होंगे, मैं वहां से पिक करके फिर साथ साथ इंस्टा अपना देखता जाता हूं और जो मजे मजे के सवाल होंगे उनको आंसर करता जाता हूं. हां.

By the way, आज हमारी जो मैम है, मैम सदफ रानी, उनका बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे.

0: Okay, next caller. Hello. Okay, call drop हो गई है. कोई टेंशन मसला परेशानी 051-902-540. ये 12:24 के बाद कॉल्स क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं यार. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हु कौन सा बात कर रहे हैं भाई, कहां से?
1: जीशान नासिर सही, हाफिज अब्दुल रहमान, जिला मुल्तान, तहसील जब्बात से बात कर.
0: हाँ, क्या कहने के बला. अच्छा, मुझे बताएं सर, क्या करते हैं आप?
1: मैं मुल्तान ड्यूटी करता हूँ, नैब कासिद की हैसियत.
0: सर मैं कहता हूँ आप हमारे दिल के कासिद हैं सर. और बताएं सर के कोई शायर, मुझे लग रहा है आप सराइकी के शेर बड़े अच्छे सुनाते होंगे, या धोड़े माइये वो जो सुर वाले होते हैं, आते हैं सर आपको?
1: मैं आता हूँ, थोड़ा बताता हूँ, इंशाल्लाह पढ़ता हूँ. मैं इब्तदा कर लूँ अपनी आवाज से. इब्तदा है रब्बे जलील की, बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ. देखती आंख सुनते कान, हाफिज अब्दुल रहमान का सलाम. मेरे साथ खुर्रम भाई मुस्तफा हैदर से, खसूसी तौर पे मेरा सलाम.
0: मुस्तफा हैदर भाई, खसूसी तौर पे सलाम आया आपको. अच्छा, So, हाँ जी,
1: मैं आप सराइकी में कुछ
0: वो सराइकी के जो वो दौड़े नहीं होते के मंडे आवे माया, कोई गड्डी आई स्टेशन ते परे हटवे सानू माया वेखण दे, वो वाले कोई वो टाइप सुनाया मैं कोई.
1: नहीं वो नहीं आते मुझे. अच्छा, तो थोड़ा सा अदबन शेर आता
0: है. हाँ वो सुना दे, वो अदबन सुना दे. अदबन, हम बेअदब लोगों को अदबन शेर सुना दे आप.
1: अल्लाह रहम करे.
0: आमीन.
1: अबे अलहम्द कुनु व नास तई, मैं सारा कुरान करीम चुमा.
0: आहा,
1: या किबला काबा बैतुल्ला ते या रब दी जात कदीम चुमा.
0: आहा,
1: या लह कलम लम अकाम चुमा, या अर्श आला अजीम चुमा. हिन सर मद सारे मीम दे वासिफ, मैं पहले क्यों ना मीम चुमा.
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय.
1: अगर जिको मीम दी तजीम नहीं, बंदा बेफरमाने सा नैदाने.
0: हाँ
1: हाँ, बकर रहे बंदगी विच, ना ता ओ जंगली हैवाने सा बेईमाने.
0: हाँ
1: हाँ, पंज तन पाक दा दुश्मन है, ओ दौजख दा मेहमान है,
0: बेईमान है.
1: हाँ
0: हाँ हाँ
1: हाँ हाँ, चश्म मियां इक्यों नी शक्ला फिट गया, एक मदनी दा एहसान है रब रहमान.
0: हाँ, अब देखें आपने सुनाया है, यकीन जाने इसी इच्छू मैंने एक और शेर याद आ गया, अभी अभी जहन में उतरा है, इसी तरासुब के साथ अब आपके हवाले कर रहा हूँ, अमानतन आपके हवाले कर रहा हूँ. अब जो जिसको जिस मकाम पर जाकर सुनना है सुनने, आप जरा ये लास्ट वाला शेर दोबारा पढ़े, मैं इसी के ऊपर मिसरा कहता हूँ. आप लास्ट वाला दोबारा पढ़े. दिल विच हुब हैदर दी ना होवे, दिल विच हुब हैदर दी ना होवे, बंदा ओ बेईमान है भावे चुके कुरान है. हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय. दिल विच हुब हैदर दी ना होवे, ओ बंदा बेईमान है भावे चुके लख कुरान है. क्या बात है किबला, क्या बात है यार, किस मकाम पर ले जाते हैं आप लोग यार. मैं प्रोग्राम के आगाज में थोड़ा सा फन मस्ती माहौल मजाक करना चाह रहा हूँ, ताकि जरा हमारी यंग लॉर्ड जरा एंजॉय करें. एसी लगा दो, गर्मी क्यों लग रही है मुझे इतनी, अक्टूबर में भी इतनी गर्मी क्यों लग रही है भाई. एसी चला दे. जीशान मेरी आवाज सुन रहे हो ड्यूटी के उस पार, हमने कौन सा बिल देना है इसका यार, एसी लगा मेरे भाई. घर वाला तो चलो बंद कर दिया कि बिल देना होता है, इसका कौन सा बिल देना है, हमने इसको लगाओ यार. गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे. माँ सदके जाए, आज हमारे साथ बतौर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद जीशान दुरानी भाई. अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई, कैसे सर आप? ठीक है, लगाएं सर इसको, हमने कौन सा बिल दे रहा है इसका. सर मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है. तो आप क्यों गर्मी में बैठे, वो वाला भी ऑन करें ना यार. ओके, नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो भाई, कहाँ से?
2: जी,
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. निमशा तुम बताओ, तुम कैसी हो, क्या चल रहा है लाइफ में?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. लाइफ में ये चल रहा है, अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं.
0: क्या हुआ, खैर हो, कोई गुड न्यूज है?
2: नहीं, गुड न्यूज नहीं है, वो मामा की थोड़ी सी तबीयत खराब है.
0: देखें, लाजमी नहीं है कि गुड न्यूज और बैड न्यूज के लिए बंदा हॉस्पिटल जाता है. सम टाइम इसलिए भी जाता है कि अगर आपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करना हो तो आपको मेडिकल करवाना पड़ता है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कोई गुड न्यूज है, आप स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जा रही हैं, ये पूछा है मैंने आपसे.
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं.
0: अच्छा, यानी कि बाहर पढ़ने नहीं जा रही, कोई गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है.
2: जी बिल्कुल.
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: आपका शो सुन रही थी और मुझे मेरा मूड फ्रेश हो गया। वैसे आज के दिन तो खुर्रम भाई नहीं आते भाई।
0: यार खुर्रम भाई क्यों आते हैं? खुर्रम भाई जुम्मे वाले दिन आते हैं, इसमें हम आते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बड़ी।
2: कल आपको मैं थोड़ा सा डर डर के करती हूं।
0: क्यों डर डर के क्यों करती हैं आप? मैं तो बहुत देखें, अभी आपने कॉल की, कोई हमने
2: नहीं नहीं वैसे पता नहीं क्यों आपसे डर लगता है।
0: क्यों मतलब क्यों? ये हम जिशानियन से पूछते हैं, ठीक है?
2: आप लड़कियों को डांटते थे ना
0: इसलिए। नहीं मैं लड़की लड़कों मैं बल्कि लड़कियों के साथ तो मैं बड़ा सॉफ्ट स्पोकन हूँ यार। शहीर भाई इनको बताओ यार, शहीर तुम आज सुन रहे हो तो इनको कमेंट में बताओ। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। शहीर जरा इनको बताओ कि लड़कियों के साथ मैं कितना सॉफ्ट स्पोकन हूँ और लड़कों के साथ मैं क्या करता हूँ जरा। शहीर भाई ये कह रहे हैं कि आप लड़कों के साथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लीज प्लीज गिव देम सम एग्जांपल। खातून कह रही है आप लड़कों के साथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, लड़कियों को डांटते हैं।

0: ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन. आगे बढ़ते हैं. 0519025540. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो.
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. या हाजी बदर.
0: जनाब जनाब जनाब वालेकुम अस्सलाम. मुझे ये बताएं,
1: कैसे रेडियो एंड टीवी आर्टिस्ट तक मलिक गुजर खान से.
0: मलिक गुजर खान से सर क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे हैं हालात सर?
1: पहले तो अपनी बेटी वन वन की शान और कमांडर मैं जनाब सदफ रानी को बहुत बहुत जन्मदिन मुबारकबाद पेश करता
0: हूं. खैर मुबारक जी, खैर मुबारक.
1: और उस्तादे मोहतर आपको और आवीद की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं.
0: बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी.
1: तो उस्तादे मोहतर मैं पता है कि मैं आपने मुझे समझ गए होंगे कि मुर्शद मुर्शद का लकब दिया हुआ है आपको मैंने.
0: सर बड़ी मैंने शेर का कमेंट पढ़ लिया.
1: और जी अपना दूध क्या नाम है कुछ तो वाह है तो आप बड़े बहुत खूबसूरत शो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर करूंगा. वो शो में मैंने सुना था ना, तो हम नहीं लेने के लेना चाहते, लेकिन किसी को हक का खुल रही है कि वो एक आदेश के सामने आकर इस तरह बातें
0: ये चीज
1: चैलेंज करे. क्यों चैलेंज करे? आज वो बंदा सुन रहा होगा, मैंने भी सुना है. आज मेरे मुर्शिद के सामने आकर जो है सामने आकर बात करे. मैंने सुना हुआ है उन्होंने बड़ी तोहिन की है उनकी, लेकिन मैं उन्हें क्या कहता हूँ, वो मेरे उस्ताद है. मैं उस्ताद का लकब दिया हुआ है उनको अपना मुश्तबा हैदर को.
0: देखे मुश्तबा, लोग कितना प्यार करते हैं आपसे यार, आप वैसे ही इतना डिसार्ट होकर बैठ गए.
1: लेकिन मैंने यकीन जाने के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. आधा घंटा तो उन्होंने आज नाम नहीं लेना चाहता.
0: जी जी.
1: फिर कॉल उन्होंने दी और उस बंदे को इतना खराब किया गया. देखेगा वो मेरा बेटा, मैंने से बेटा बोला हुआ. वो बंदा मेरे मुर्शिद के सामने आकर बात करे ना, मैं पूछू.
0: चले बहुत शुक्रिया. वो ना हमारी एक पंजाबी की कहावत है, हुआ कुछ यूं. मेरी वालदा मुझे इस मौके पे याद आ गई, वो सर गुफ्तगू फरमा रहे थे. तो हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसा पहले की बात है, कोई 2-3 साल पहले की बात है, वो हमारे बिल्कुल घर के साथ ना एक खातून रहती थी, और उनका एक अजीब सी हरकत वो करती थी कि उनके घर का जो कचरा है ना वो दूसरे के घर के सामने रख देती थी. मतलब वो एक सोसाइटी की गाड़ी आती है जो कचरा पिक करके जाती है, तो वो क्या करती थी, डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट कि घर के बाहर आपकी अपनी डस्टबिन लगी है, शायद उनका कचरा ज्यादा होता होगा. अगर कचरा ज्यादा है भी तो आपको चाहिए कि अगर आपकी डस्टबिन फिल होगी तो अपनी डस्टबिन के साथ रख दें ताकि उठा लिया जाए. लेकिन शायद वो ये तासुर नहीं देना चाहती थी आस पास के जो घर है उनको कि इतना ज्यादा कचरा उनके घर से निकलता है. हालांकि कोई इसमें बुराई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं तो जाहिर है कचरा ज्यादा होगा, तो कोई इसमें बुराई वाली बात तो नहीं है. सो वो क्या करती थी खातून कि वो अपने घर का जब उनका सामने जो उनका एक डस्टबिन है, ट्रैश है, जहां से गाड़ी पिक करके लेके जाती, जब वो फिल अप हो जाता था तो वो क्या करती थी कि कभी हमारे घर के सामने रख दिया, कभी हमारे साथ से साथ वाले घर के सामने रख दिया. तो मेरी वालिदा अक्सर उनको कहती थी कि मोहतरमा ये ना किया करें. उसकी वजह ये है कि सम टाइम हम यू निकलते हैं घर से बाहर तो वो कचरा होता है वो ठीक नहीं लगता है. आप बेशक अपने घर के पास रख लिया करें या घर के अंदर रख लिया करें, जब वो आए कचरे वाली गाड़ी तो आप दे दिया करें. वो एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, तीन दफा हुआ. तो मेरी वालदा ने एक दिन मुझे बताया, तो मेरी यकीन जाने की आदत है, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि अगर खवातीन और खवातीन की बात हो रही है आपस में तो मैं कभी भी बीच में इंटरफेयर ना करूं. घर में अक्सर जो है वो डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, हमारी जो मेड्स हैं बाजियां आती हैं घर में हेल्प आउट करवाने के लिए, तो अक्सर कभी अम्मी की उनसे बात हो रही हो तो मैं कभी कोई तस्करा नहीं करता, कभी कोई बात नहीं करता. मतलब अम्मी ने कहना है कि इतनी सैलरी बढ़ा दी है तो बस बढ़ा दी है, इस डेट पे सैलरी देनी है तो देनी है, इतनी उसने छुट्टियां करनी है तो करनी. मतलब मैंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया कि बाजी आप आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ये है ये नहीं. और खासतौर पर खवातीन से मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्राह-ए-रास्त मुखातिब ना हूं. हुआ ये कि वो एक बार, दो बार, तीन बार, वो चौथी बार कहीं अम्मी ने थोड़ी सी सख्ती से उनको कहा, तो वो कोई उनका जो शायद बेटा था या भाई था, कोई मेहमान आया हुआ था उनका, उसने जब सुना कि अम्मी थोड़ी सी सख्ती से गुफ्तगू कर रही हैं तो वो आ गया. अब जब मैंने पहली दफा मेल की बात सुनी या मेल की आवाज सुनी, बस मैंने कहा अम्मी अब आप साइड पे हो जाए, इस लम्हे का तो इंतजार था मैं. तो वो सिर्फ कहने की बात ये है कि वो खैर अब उसके बाद क्या हुआ मैं ज़ाहिर है रेडियो पे ना मैं बताना चाहता हूँ ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे इंस्पायर्ड हों, तो क्या हुआ होगा आप लोग बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो खैर उस दिन के बाद हुआ क्या, उसके रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ. हुआ ये कि उस दिन के बाद ना वहाँ पर कचरा रखा गया हमारे घर तो क्या, हमारे घर से सात से सात से सात वाले घर में भी कभी एक्स्ट्रा कचरा हमें नजर नहीं आया। वो खातून फिर बड़े तरीके के साथ अपना कचरा जो है वो मैनेज करती रही। उसके बाद जब तक वो रही, फिर वो उन्होंने घर चेंज कर लिया और वो चली गई, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन एक साल रही और उसके बाद कभी हमें वो कचरे की शिकायत नहीं आई। सिर्फ एक दफा मैंने उनके मर्द से बात की, वो भी तब की कि जब उस साइड से मर्द की आवाज बुलंद हुई तो फिर मैं सामने खड़ा हो गया जाके। देखें, आप अगर बतौर बेटा अपनी माँ को डिफेंड नहीं करेंगे, बतौर शोहर अपनी बीवी को डिफेंड नहीं करेंगे, बतौर भाई अपनी बहन को डिफेंड नहीं करेंगे, बतौर बाप अपनी बेटी को डिफेंड नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या, आपके मर्द होने का या आपके मेल होने का क्या मकसद है इस दुनिया में। तो खैर, वो सारी बातें एक साइड पर रखते हुए, वो हुआ ये कि जब 6-7 माह गुजर गए तो मैं और अम्मी एक दिन बैठे हुए थे, तो हमारी वो एक पड़ोसन आंटी हैं, वो आई, अम्मी की दोस्त थी, तो उन्होंने कहा बाजी अब तो मसला बहुत बेहतरीन तौर पे हल किया जिशान ने। तो हमारी पंजाबी की एक कहावत है, अब जो पंजाबी समझते हैं उनको समझ में आएगी। अभी जैसे वो अभी जो कॉलर आए थे उन्होंने बात कही कि आज बात करें, तो वो अम्मी ने कहा कि वो हमारी पंजाबी की कहावत है कि पहले तुसी खेड़दे रहे हो कुड़िया नाल, हुण आ गई तुहाडी नडिया नाल। तो बात वही है कि पहले आप हिले हुए थे बच्चों के साथ खेलने के, अब काम और हो गया। तो बात वही है जो मेरी अम्मा ने कहा कि पहले जैसे खेलते रहे हो कुड़िया नाल, थोड़ा आ गई नड्या नाल।

शहीर कह रहे हैं जिशान भाई आपको छेड़ो तो आप ईगो पे ले जाते हैं, मैं लैपर्ड्स का पार्टी मील बनने लगा था, बचा हूँ मैं। नहीं यार, तुम्हें हम किसी और का शिकार क्यों होने देते, हमारे अलावा तुम्हें कोई और क्यों शिकार करे।

बल्ले भाई बल्ले जिशानियल तुम कहो यार, कमेंट्स करो, गपशप लगाओ। अब तुम्हारे इंस्टा से जो मैसेजेस हैं वो शामिल कर रहा हूं, जो आप मेरे से सवाल करना चाहते हैं जरूर करें। मैंने एक दो सवाल देखे, बड़े मजे मजे के सवाल है, और एक सवाल है यार ऐसे तो नहीं होता यार, बड़े मजे का सवाल है। तीन चार मेरे देखे जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन से पढ़े, मैं अभी प्रॉपर पढ़ के फिर आंसर करता हूँ। बड़ा मजा आने वाला है आगे आने वाले लम्हात में। और मेरा ख्याल से मुश्तबा भाई, अगर आप अभी पहुंच सकते हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो 2 बजे अपने प्रोग्राम के लिए आ जाइए। वुड लव टू सी यू ओवर हियर। आ जाए यार, कोई मसला नहीं है, द लिसनर्स वुड लव यू। आ जाए

ओके अहमद जफर हमारे साथ मौजूद है। अहमद तुम तो ऐसी बातें ना करो यार, तुम्हें तो मैंने एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन दी मेरी जान। अच्छा कह रहे हैं मैंने सुना था आप 500 में भी करते हैं इवेंट। यार तुम्हें कौन अंदर की बातें बता रहा है, सच्चा कर लेता हूँ अगर कोई दे तो। अब किसी और को ना बता रहा है कि 500 में भी कर लेता हूँ, वो कहेंगे शायद 500 पे भी आ जाता है, बट ठीक है अगर हो तो बता रहा कोई है। हाँ यार हकीकत है मैं मतलब 500 से मैं शुरू जाता हूँ इवेंट, और मैक्सिमम अगर जिस दिन मुझे देखे जिशानियस, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ी सीधी और साफ बात बता रहा हूँ, शहीर भाई, सारा अली जई, खुशबख्त इजाज अहमद खान, मायरा जंजुआ, जितने सानिया ये जितने भी है, हुरिया जितने भी लोग हैं, जितने मुझे नाम याद है, कोमल, आयना, नूर, फातिमा, जितने भी है अब जितने जितने मुझे याद आ रहे हैं, देखो मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन मुझे 3500-4000 वाला इवेंट मिले ना, उस दिन मैं पिज्ज़ा खाता हूँ। उस दिन मतलब बताने की कोशिश की कर रहा हूँ कि उस दिन मैं इतना खुश होता हूँ कि ओए होए आज दिहाड़ी सही लगी है, जिस दिन 4000 रुपये वाला इवेंट मिले, और जिस दिन साथ इन ड्राइव के भी पैसे वो देते कि यार ये 4000 रुपये आपके इवेंट के पैसे हैं और 1000 रुपये जो है हम आपको आने जाने का किराया दे रहे हैं, उस दिन तो मैं पता क्या करता हूँ, उस दिन तो मैं कहता हूँ लल्ला लला लला लला लला लला लला लला।

अच्छा जी, मजे का सवाल है और सलमान रेहान हमारे साथ मौजूद है इंस्टा के ऊपर, कह रहे हैं जिशान भाई सवाल आपसे करूंगा और कसम उठाएं कि आप सच बताएंगे। मुझसे अगर तुम कसम ना भी उठवाते तो भी मैं सच ही बताता, क्योंकि सवाल मैंने पढ़ लिया और एक ऐसा सवाल है नहीं जिस पर झूठ बोला जाए। और सवाल बड़ा सिंपल है और बड़ा मजेदार है कि जिशान भाई क्या आपने कभी लंडे के कपड़े पहने हैं? यार इसका जवाब बहुत सिंपल है कि हाँ भाई पहने हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि अगर मुझे आज भी गुजरते हुए किसी रेडी के ऊपर, चाहे वो लंडा है कुछ भी है, मैं गुजर रहा हूं और मैंने देखा है कि वो सामने कोई शर्ट लगी है, मुझे वो शर्ट अच्छी लगती है, मैं रुकता हूं, मैं उसको ट्राई करता हूं, अगर वो मुझे फिटिंग में पूरी आ जाती है और अच्छी लग रही है, खुदा की कसम आई जस्ट डोंट केयर कि वो 100 रुपए की है या 50 रुपए की है, लंडे की कहां की है, आई विल टेक इट। हाँ, कुछ हाइजीन प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आप लंडे से भी लेते हैं तो आप उसको अच्छी तरह धोएं, अच्छी तरह आप उसको वॉश करें, गर्म पानी से वॉश करें, सर्फ लगाएं, अच्छा डिटर्जेंट लगाएं और उसको आप क्लीन करें, प्रेस करके पहने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। खासतौर पर जितने लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, यंगस्टर्स सुन रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा ये लंडा बहुत अच्छी चीज़ है यार, अगर तुम पैसे थोड़े से कम अगर आजकल कमा रहे हो तो और अच्छी चीज़ क्वालिटी चीज़ पहनना चाहते हो तो कोई लंडा कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं। हाँ, हाइजीन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें, जरूर उसको फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम इट, वो भाई ने सवाल किया, सलमान ने, पता नहीं शायद उनको लगा कि मैं झूठ बोलूंगा या मुझे जवाब देते हुए कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने पहना है पहले भी और मैं आज भी पहन सकता हूं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगे, चाहे वो 100 रुपए की है, 50 रुपए की है, 200 रुपए की है, अगर अच्छी मुझे लग रही है, फिटिंग में है, मैं बाखुदा उसको खरीद लूंगा और पहन लूंगा, मुझे कख फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट ऑन मी, इट्स इन मी। ओए होए होए होए यार, जुमला देखो, खुशबख्त एजाज अहमद खान जुमला देखो यार, शहीद अहमद सुलहरी जुमला देखो यार, अहमद जफर जुमला दे गया, आईना नूर जुमला देखो, सायरा जंजुआ जुमला देखो, फरवार रुबाब जुमला देखो, इस बानिसारों के नाम तो लेना, हुरिया मलिक जुमला देखो, एम एच हसनैन जुमला, जुमले जुमले की कदर कोई है जो इस जुमले की कदर करे यार, बिनते इम्तियाज, ततीरे जैनब, सैयदा सलमा, नादिया अहमद, स्नो कवर्ड वुड, आरिफा खान, फरियाल मोइज, इट्स निमो, यार जुमले की कदर करो यार, जुमले की कदर करो। कह रहे हैं कि जी मैं पहन सकता हूं, कोमल जुमला सुनो यार, कहता है मैं पहन सकता हूं क्योंकि आई नो इट्स नॉट विच इज ऑन मी, बिकॉज आई नो द मैटर थिंग इज व्हाट इज इन मी। कोमल कह रही है आप लेकिन रोड पे शर्ट क्यों ट्राई करते हैं यार, वो रेडी वालों के पास ट्राई रूम नहीं होते हैं यार, और मेरी कोई इतनी अच्छी बॉडी भी नहीं है कि नजर लग जाए, सो बिल्कुल मुतमईन रहे हैं आप इस हवाले से।

तैमूर भाई भी हमें सुन रहे हैं। तैमूर भाई कैसे हो? ठीक हो? शादी हो गई तुम्हारी? ना तुम्हारी ना हमारी। क्या खरे क्या खाए हम, क्या खाए मतलब क्या खाए कि हमारी शादी हो जाए? मतलब कौन सा आबे हयात पिए? क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मैं तो चलो पैसे नहीं कमा रहा, तुम तो एक जमींदार आदमी हो।

0: हुआ ये कि बचपन में ना मुझे बहुत शौक था, एक आइसक्रीम आती होती थी, आपको भी बहुत पसंद होगी, और आम से अभी जब मैं नाम लूंगा तो आम में से बहुत से लोग कहेंगे यस हमारी भी फेवरेट थी, और वो थी जेट स्पॉट। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा किस ब्रांड की थी, लेकिन वो आइसक्रीम इतनी फेमस है सबको पता चल गया होगा। जेट स्पोर्ट जो आइसक्रीम है मुझे बड़ी पसंद थी, ठीक है, वो बर्फ वाली ऑरेंज कलर में होती थी, वो बर्फ वाली आइसक्रीम थी। अच्छा हुआ क्या कि बचपन में ना जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरा ख्याल से हार्डली शायद 9-10 साल उम्र होगी, तो हमारे घर के करीब एक दुकानदार था जिससे हमने उधार सौदा लगाया हुआ था। उधार सौदे से मुराद ये है कि अब्बू ने उसको कहा हुआ था कि यार होता ना कि सम टाइम में कभी घर ना हो, मेहमान आ जाए या कोई भी ऐसा इशू हो, तो ये बच्चे हों तो इनको सौदा दे दिया करें, तो आप लिख लिया करें तो मैं फिर आपको पे कर दूंगा, हफ्ते के हफ्ते कर दूं या महीने बाद कर दूं या डेली कर दूं। तो वो खैर वो बंदा अबू का दोस्त भी था, तो उसने कहा जी ठीक है सर, मसला ही कोई नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अपनी दुकान समझें इसको। अब सीन ये हुआ कि मैंने क्या करना है कि जब जब मुझे घर वालों ने कहना ना कि यार अंडे ले आओ, अब मैं 9-10 साल का था ये आपने जहन में रखना है, ठीक है, अब जब जब लोग घर वालों ने मुझे कहना कि यार अंडे ले आओ, आटा ले आओ, चीनी ले आओ, पत्ती ले आओ, दूध ले आओ, मतलब फर्ज करें कि अब घर वालों को ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, अब ये लड़के इससे रिलेट करेंगे, शायद लड़कियों को पता चल सके ना चल सके, लेकिन ये बड़ा कोई लंबा सा नंबर है, इस पे पहले कॉल ले लेते हैं। कौन, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करी, कहाँ से बात करी, आपका नंबर बड़ा यूनिक सा। बेबी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाँ मैंने कहा ना कि बैन अलावामी कॉल है जनाब। जी बेबी, बेबी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेबी, मेरा मतलब बहन बेबी
1: की तरह। आपका प्रोग्राम अच्छा है और आपकी मैंने कॉल सुनी और मैंने सोचा कि मैं भी अपने दिल की बात कर दूं,
0: कर दें,
1: क्योंकि मैं भी ये बात कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने कॉल की थी प्रोग्राम में बट मेरी कॉल मिली नहीं।
0: अच्छा
1: देखिए आपके पास ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी अगर किसी के खिलाफ कोई इसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो कंपनी भी बर्दाश्त नहीं करती। और ये तो गलतियाँ तो होती है, किससे नहीं होती, किसी से कम किसी से ज्यादा, लेकिन ये तो गलती भी नहीं थी।
0: ऐसे ही।
1: मैंने यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से मालूम किया है कि जो वो अशार पढ़ रहे थे मुश्तबा जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मैंने नहीं सुना कि कोई प्रेजेंट उनकी तरह की उर्दू बोल रहा हो।
0: सुन रहे हैं मुश्तबा भाई आप,
1: मुझे उनकी उर्दू बहुत अच्छी लगी, उनके बोलने का अंदाज, और माशाल्लाह से उनके पास काफी नॉलेज है
0: बहुत।
1: मोस्टली प्रोग्राम पोएट्री प्रोग्राम में कॉल करती रहती हूँ
0: जी,
1: लेकिन मुझे उनका जो लहजा अंदाज और इतनी अच्छा उनका नॉलेज मुझे लगा कि मैंने अभी तक इस पैनल पे ऐसे उर्दू बोलने वाले इंसान नहीं देखा।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही,
1: ठीक है ना। तो अब आप ही मुझे बताइए जीशान कि वो शेर है कि वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस घड़ी सर के लटकी हुई तलवार गिरे। अब आप मुझे बताइए कि इसमें लटकती हुई तलवार हो सकता है, और इस पे बहस हो रही थी कि जी नहीं लटकती हुई तलवार है, और मुश्तबा भाई कह रहे थे कि नहीं लटकी हुई तलवार है। तो मैंने यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से भी मालूम किया है, जो अदब की जो अकेडमीज है उन्होंने भी यही बोला है कि लटकी हुई तलवार होता है।
0: यानी कि मुश्तबा भाई ठीक कह रहे थे
1: कि चॉइस थी कि जलते हुए पर टूट गए तो इसमें भी चलते हुए तीर पर फोकस किया जा रहा था। दूसरे साहब कह रहे थे, हमीद गुल भाई साहब कह रहे थे कि वो जलते हुए तीर है, तो बट मैंने कंफर्म किया है तो वो कहते हैं जलते हुए पर ही है। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है कि इज्जत सबकी होती है, और जो इस चैनल पे बैठे हैं आप एक पाकिस्तान की जो है के आवाम की तबीयत के लिए बैठे हुए हैं, और मैं नहीं समझती हूँ कि किसी को भी किसी की
0: हकीकत ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मोहतरमा, और मैंने बिल्कुल आपकी गुफ्तगू बहुत ही तहमुल से सुनी और बिल्कुल आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। और मेरा फिर यही कहना है कि मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि सिंस चूंकि मैंने खुद वो प्रोग्राम सुना नहीं है, और मैं मुश्तबा भाई के जो कह लें टैलेंट है उस पर भरोसा करते हुए मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने गलत नहीं पढ़ा होगा। और मैं इवन ये भी कह सकता हूँ कि अगर गलत पढ़ा भी है, मैं इस बहस में भी नहीं जाता गलत है या नहीं है। अगर गलत पढ़ भी दिया है तो क्या हो गया? कोई बहुत, अल्लाह माफ करे, कोई गुनाह हो गया है कि पढ़ दिया है, गलत पढ़ दिया तो क्या हो गया? कोई ऐसा जुमला चला गया है जो ऑन एयर नहीं जाना चाहिए था? या फर्ज करें अगर गलत हो गया है, आपने उसकी तस्दीक करा दी है, उन्होंने तस्दीक कर ली, बस बात खत्म हो गई, इसमें गैंग अप होकर आ जाना और दूसरे प्रोग्राम में जाके उसको जिक्र करना, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आप कोई शख्स
1: नहीं,
0: चाहे
1: थोड़े
0: देखें
1: काफी प्रोग्राम्स में इस बात को शेयर किया गया है,
0: ये उनसे ज्यादा मैं
1: बहुत
0: बरमला
1: मीडिया
0: कहूंगा।
1: है उनके अगेंस्ट सारी
0: वो
1: बातें की
0: सुने
1: गई
0: सुने मेरी
1: हैं।
0: बात सुनिएगा, बहन मेरी बात
1: ये
0: सुनिएगा,
1: बहुत रिस्की
0: सुनिएगा
1: है।
0: सुनिएगा मेरी बात सुने। मैं
1: और
0: बाबांगे दोहल ये बात करता हूं कि वो बाबा भोले शाह सरकार ने फरमाया था कि बुजल कितने ना समझ लें दिल ओ कातो डरदा, इसे गले डरदे कितने मैं दिल दी गल नहीं करदा, यारो दिल दी गल नहीं करदा। ये लिसनर से ज्यादा, वो जो लिसनर हैं, जो भी साहब हैं, उनसे ज्यादा गलती मैं इसमें प्रेजेंटर्स की मानता हूं कि वो क्यों अलाउ कर रहे हैं कि अपना एक साथी प्रेजेंटर को कोई डिस्कस कर रहा है और नेगेटिव वे में डिस्कस कर रहा है, और वो उसको अलाउ कर रहे हैं, उसको ऑन एयर टाइम दे रहे हैं। तो ये इसमें लिसनर से
1: मैं
0: ज्यादा मैं प्रेजेंटर की
1: आपको
0: गलती मानता हूं।
1: बताऊं कि वाकई ये उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन्होंने उनकी कॉल बंद नहीं की और बहुत सब्र से और बहुत मोहब्बत से
0: देखें
1: उनकी
0: अगर
1: बातें
0: तो
1: सुनते
0: मुश्तबा
1: हैं,
0: भाई ने नहीं की
1: तो
0: तो वो
1: ये
0: तो समझा
1: बहुत
0: जा
1: पॉजिटिव
0: सकता है
1: बात
0: कि,
1: है उनकी।
0: देखें मुश्तबा भाई ने अगर नहीं की तो वो तो समझ में आती है कि चले वो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे या अपने डिफेंस में गुफ्तगू फरमा रहे होंगे। लेकिन अगर किसी और शो में जाकर उन्होंने कॉल की है और इस तरह की गुफ्तगू की है, डिस्करेज करने की कोशिश की है, और उस प्रेजेंटर ने उनको स्नब नहीं किया, तो ये प्रेजेंटर की गलती है। और उनके एंड पे उनको ये सोचना चाहिए कि उनके एक साथी के लिए अगर कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है और आप उसको स्नब नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। खैर एनीवे, वो शायर कहता है कि इधर उधर की ना बात कर मुझे ये बता कि काफला क्यों लुटा, इधर उधर की ना बात कर मुझे ये बता कि काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। छोड़े वो क्या कह रहा था, आपने सुना क्यों? सीधी सी बात है ना यार। और ये कतन मैं फिर ये बात कह दूं, मैंने प्रोग्राम के आगाज में इसलिए बात कही थी कि पूरा टाइम आपके पास हो कि आए मेरे से गुफ्तगू कीजिए, मेरे से बात कीजिए। और ये बात भी मैं कर दूं, ये सारी बातें करने के बाद अगर आपको कोई भड़ास हो और अभी आपकी कॉल ना मिल पा रही हो तो वेट कीजिएगा जब मैं दोबारा प्रोग्राम करूं। ऐसा ना कीजिएगा कि मेरा गुस्सा आप किसी और प्रेजेंटर के प्रोग्राम में निकालें, ये काम ना कीजिएगा। मुझे इस चीज़ का वो नहीं है कि मेरी गुफ्तगू आप कहीं और करेंगे लेकिन उनका प्रोग्राम खराब होगा, और मैं अकेला काफी हूं। तो मेरे साथ अगर आप गैंगड अप होना चाहें तो मेरे साथ अकेले आए, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि यार किसी के लिए, नो नॉट एट ऑल, बुरी बात है यार।

मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं, सर मैंने सुना है आप ट्विन सिटीज में सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले होस्ट हैं। हाँ, तो ये 4000 रुपए में पूरा 10 लीटर पेट्रोल आता है मेरे भाई। सबसे ज्यादा क्या चार्ज करें, पेट्रोल पंप अपने नाम लगवा लें। चांद से चेहरे, गाना बड़े मजे का यार, ये मुझे डेडिकेट हो रहा है। अच्छा वापस चले यार उस जेट स्पोर्ट पे। हाँ, तो हुआ ये कि वो, अब लड़के मेरी ये बात सुनेंगे कि जो घर वाले होते हैं ना, चाहे माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी, तो चले उसका तो एक मामला ही डिफरेंट होता है, इनको एक बार याद नहीं रहता कि यार क्या मंगवाना है। मतलब आटा मंगवाना है तो ये नहीं कहेंगे बेटा आटा, अंडे और दूध ले आना। आप आटा लेकर आएंगे तो कहेंगे अब अंडे ले आओ, अब अंडे लेकर आओगे मेरा दूध ले आओ, मतलब इकट्ठे नहीं बताते। तो मैं था उस टाइम पे 8-9-10 साल का, अब अम्मी ने मुझे कहना अंडे लेकर आओ तो मैंने एक चीज और भी ले लेनी, भला क्या, समझ गया आप। फिर अगर मुझे दिन में अम्मी ने कहना जाओ जरा दूध ले आओ तो मैंने दूध के साथ एक चीज और भी ले लेनी, भला क्या, बताएं जरा मुझे। फिर अगर अम्मी ने कहना कि जाओ जरा आटा लेकर आओ, मैं अगर आटा लेने जा रहा हूं तो मैंने एक चीज और भी ले लेनी, भला क्या, बताएं। मतलब अगर दिन में अम्मी ने मुझे 10 दफा भेजना है तो मैंने 10 दफा एक चीज एक्स्ट्रा लेनी है वहां से, भला क्या।

0: Okay, 051-111-0101-902540. Few more calls and उसके बाद बाकी मामला की तरफ जाएंगे. आइसक्रीम से आगे नहीं निकल पा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
1: वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जीशान, मैं कराची से परवीन आसिफ बोल रही हूँ.
0: कराची से परवीन?
1: परवीन आसिफ.
0: परवीन आसिफ साहिबा, कैसे हैं आप? परवीन आसिफ साहिबा,
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ.
1: और मैं तो बहुत गुस्से में थी ईशान. मैं सलाम पेश करती हूँ. आप जो बातें जितनी भी शुरू से लेके अब तक कर रहे हैं, सच्ची बात आपको बताऊँ, मैं समझ के आज रहमान अनवर आएंगे तो मैं इंतजार में थी, लेकिन खैर आपकी आवाज आई.
0: वो कराची से शो नहीं लिंक हुआ,
1: मैंने देखा तो है आपको डॉक्टर के साथ उनके प्रोग्राम में.
0: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: तो लेकिन आपकी गुफ्तगू मैंने जो आज सुनी तो वाकई बहुत ही अच्छा लगा कि कोई है हमारी न्यू जनरेशन में, है ऐसे लोग जो सच को सच बोलना जानते हैं बगैर खौफ ज़दा हुए हुए. इतनी खूबसूरत आपने बातें की हैं कि मैं आपको वाकई में दिल से मेरी दुआ निकल रही है, अगर सब इसी तरह हो जाए ना तो ये माशरे की बुराइयाँ खत्म हो जाए. जीशान
0: सही बात,
1: बहुत खूबसूरत आपने बात की. किसी को क्या हक है ये किसी प्रेजेंटर की, मैंने उनको इतिशाम आप नाम ले रहे हैं शायद ना, मैंने कभी नहीं सुना उनको ना मैंने. हाँ मैं सुनती ही नहीं, मैं सिर्फ संडे को सुनती हूँ आतिर को.
0: सही सुनती,
1: क्योंकि ये नंबर जो आपने आज दिया ना इससे मेरी कॉल मिल जाती है, वो 111 वाली लाइन थ्रू ही नहीं होती यहाँ.
0: सही बात.
1: तो खैर बहरहाल, लेकिन उनके साथ जो बदतमीजी की गई है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उन शख्स में उन साहब में इतनी हिम्मत है तो आके आपसे बात करेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं और देना जानते हैं. और जितना आप बोले बहुत खूबसूरत बोले हैं, और तमाम आरजेस की जो आपने बात की मैं उसमें 100% आपका साथ. जो बदतमीजी की गई है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उन शख्स में उन साहब में इतनी हिम्मत है तो आके आपसे बात करेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं और देना जानते हैं. और जितना आप

0: जितने भी स्टेशन है उनको सबको मिलकर वो जैसे कहते हैं मुट्ठी बना के।
1: जी जी ऐसे ही ऐसे ही, अल्लाह ताला बस
0: अगले की जरूरत ही ना हो।
1: परवीन साहिबा मैं ना, परवीन साहिबा आप जैसे ही कॉल बंद करेंगी मैं आपके लिए गाना प्ले कर रहा हूँ, आपने जरूर सुनना है वो, ठीक है? चले बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही कॉल बंद करेंगे, अब जितनी देर वो कॉल बंद करके दोबारा रेडियो लगाती है तो उनके लिए हमने गाना प्ले किया, वो सुनेंगी। और मैं बाखुदा ये भी जानता हूँ कि कभी अगर मेरे हवाले से हो तो देर विल बी नो वन, एंड ट्रस्ट मी ये भी हकीकत है कि मुझे चाहिए भी नहीं, कि मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि आई डोंट इवन नीड एनीवन। लेकिन कोशिश ये करें कि ये अच्छी बात नहीं है कि यार आपके फेलो प्रेजेंटर के बारे में कोई बुरी बात कर रहा है और आपके शो का ऑन एयर टाइम ले रहा है और आप जो है वो रिलैक्स होकर दे रहे हैं टाइम उसको, दिस इज नॉट गुड यार। प्रवीण साहब ये गाना आपके लिए, सुनिएगा जरा।

यार मैंने ना लास्ट ईयर कॉन्सर्ट होस्ट किया दिसंबर में इब्राहिम हक भाई का. वैसे मैंने 2-3 कॉन्सर्ट उनके होस्ट किया है, लेकिन जिस कॉन्सर्ट की मैं बात करूं दैट वाज इन पिंडी फूड फेस्ट. और इंशाल्लाह इस साल दोबारा होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आई विल बी होस्टिंग इट. और इब्राहिम भाई का वो कॉन्सर्ट था, इब्राहिम भाई ने उस दिन परफॉर्म करना था, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इब्राहिम भाई प्लीज आपने ये वाला गाना जरूर गाना है, और उन्होंने ये गाना गाया और हमने ऑन स्टेज जो है वो भंगड़ा किया था. असल में आपस की बात है, मेरी दादी का नाम परवीन है, तो अक्सर जब मैं जाया करता हूँ अपने नेटिव एरिया तो जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो कहते हैं नी परवीन, तो कहती हया कर पुत्र हया कर.

सलामत रहो यार, सलामत रहो, सलामत रहो, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी दे। मैंने अभी कमेंट और इंस्टा अपना ओपन किया है तो जिशानियन कह रहे हैं आपने ये कैसे कह दिया कि कोई नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे। यार ये तो मुझे वो एक शेर याद आ गया कि कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो। सलामत रहो यार, सलामत रहो, मुझे खुदा की कसम जिंदगी से चाहिए ही नहीं कुछ और यार, सलामत रहो यार। This is what I earned. मैंने literally अभी Insta खोला है तो everyone is saying कि आपने बात कैसे दी कि कोई नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे। वो शायर कहता है कि कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो। निशानियन बोलना यार, इस पे बात करना, शेर सुनना यार, शेर सुनना यार। शायर कहता है कि कभी अगर तेरे नाम पर जंग हो गई तो, तेरे नाम पर, कभी अगर तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम जैसे बुजदिल भी पहले सफ में खड़े मिलेंगे।

अच्छा, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये कि हफ्ता गुजर गया, अब्बू गए उसको कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे कितने पैसे बने, तो उसने पैसे बताए तो अब्बू ने कहा यार कितना सामान चला गया, उसने कहा जी ये कोई 50 तो सिर्फ जेट स्पोर्ट्स गई हैं। अब्बू कहते कि मैं वेचना जेट स्पोर्टा किनिया गई ना, मेरी बच्चा लै गया, जी बच्चा लै के गया होगा, एक लै गया होगा। अच्छा अब्बू मेरे ना असल में मैं शरीफ इतना था मैं नहीं

यही मसला है, आप लोग पता नहीं मानते नहीं हो मेरी बात। मैं चेहरे से इतना मासूम, मतलब चेहरे, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ चेहरे से, मैं असल में भी इतना मासूम था और चेहरे से भी इतना मासूम था कि मेरे अब्बा बात ही नहीं रहे थे कि मैं ये हरकत कर सकता हूँ। तो अब्बू कह रहे ठीक है बच्चा ले गया होगा, मतलब हफ्ते में चलो रोज भी एक खाए तो 7-8 खा ली होंगी, ये 35-40 आइसक्रीम है। तो बाद में अब्बू को पता चला कि अगर अम्मी मुझे कहती थी ना जाओ बेटा जीरा ले आओ, तो मैं जीरा के साथ साथ एक आइसक्रीम भी ले लेता था। फिर अम्मी ने अगर कभी मुझे कहना बेटा नमक ले आओ, तो मैं नमक के साथ में फिर एक आइसक्रीम भी ले लेता था। तो अब्बू ने मुझे कहा बेटा ये क्या है। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, चले ये तो एक शुगल की बात हो गई। नाउ आई वांट टू नो कि हाउ मच ज़िशानिया नोज में। उस शॉपकीपर के सामने, अब आप मेरी एज याद रखना, मतलब ये ज़िशान नासिर याद ना रखना, मतलब अभी तो ज़ाहिर है आई एम 32, तो अब एक उम्र गुजर गई। डिस्पाइट बींग द मैटर ऑफ द फैक्ट, आप ये जहन में रखो कि 9-10 साल का लड़का है, बच्चा है ज़िशान नासिर। दुकान वाले के सामने उसके अब्बा ने सिर्फ ये कह दिया है कि बेटा ये क्या तरीका है, अब आपने नहीं देनी है इसको। ये दो जुमले उन्होंने कहे हैं, मुझे बताएं मेरा रिएक्शन क्या होगा। इफ यू नो मी टेल मी व्हाट इज माय रिएक्शन।

बताएं भाई बताएं, क्या लगता है आपको? बस सिर्फ दो जुमले कि बेटा ये क्या तरीका है यार, आपने दोबारा नहीं देनी है इसको।

अब मैं इंस्टा और फेसबुक से आपके कमेंट लूंगा इस एक्सप्रेशन के हवाले से कि आपको लगता है कि व्हाट यू नो आई वाज सपोज्ड टू डू देयर. आपके वहां से मैसेज लेता हूं और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी लेता हूं जो रिमेनिंग हैं थोड़े बहुत.

नूरी आदन कह रही है उसके बाद नहीं ली होगी आपने जी। तुबाली कह रही है उनसे ली होगी दोबारा। शानी के फैन कह रहे हैं आप सैड हो गए होंगे, आपने सर झुका लिया होगा, वहां से चले गए होंगे। खुशबख्त कह रही है आप रोए होंगे। मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं कि फिर आप ग्रोसरी लेने गए ही नहीं जब तक आइसक्रीम की मंजूरी ना हुई, मतलब बगैर गए। शहजादी कह रही हैं नाराज हो गए होंगे। सैयदा सलमा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं आपने रोने वाला मुंह बना लिया होगा। कोमल कह रही हैं कि आपने इनकार कर दिया होगा कि आपने नहीं ली, एक्स्ट्रा पे करके ली होनी है आपने। अहमद जफर कह रहे हैं, रोहान मलिक कह रही हैं आपने दोबारा वो आइसक्रीम ही नहीं ली होगी। अगर आप सच मेरे से पूछें, यू माइट नॉट बिलीव इट, मैंने 3 दिन कोई बात नहीं की थी। और मैंने शायद आपको बताया कि मेरी अम्मा अक्सर ये बात कहा करती थी, कहा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज डूइंग गुड। वो अक्सर कभी कोई मदर्स डे हुआ या कोई ऐसा इवेंट हुआ तो मैं उनको कॉल पे लूँगा। एक्चुअली वो थोड़ी सी शाये हैं, मेरे वालिद भी, मेरी वालदा भी, अदरवाइज मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कभी उनको रेडियो पे लेकर आऊँ। एक चीज़ जो मेरी ख्वाहिश रही है, मतलब अगर आप मेरे से पूछे ना कि यार 15-16 साल के रेडियो करियर में आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को इंटरव्यू किया, क्रिकेटर्स के साथ काम कर लिया, सिंगर्स के साथ काम कर लिया, राहत फ़तेह अली खान साहब को इंटरव्यू कर लिया, और मतलब यू नो जो एक बड़े बड़े नाम होते हैं, ख्वाहिश होती है, तो कोई ऐसी ख्वाहिश, तो आई रियली वांट कि मैं एक प्रोग्राम अपनी अम्मी और अबू के साथ करूँ। मेरे अम्मी अबू सामने बैठे और मैं उनके साथ प्रोग्राम करूँ, जो कि काफ़ी टफ है क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। वो वैसे तो बड़े वोकल हैं लेकिन कैमरा और माइक पे वो थोड़े से शाय हैं। तो मेरी अम्मी अक्सर एक बात कहती है कि जब तुम छोटे थे ना, शायद मैंने बात पहले भी आपको बताई थी कि जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हारे शोर से नहीं डरते थे, हम तुम्हारी खामोशी से डरते थे। बिलीव यू मी, मैंने उसके 3 दिन तक बात नहीं की और मेरी अम्मी ने बकायदा मेरे अब्बा को डांटा कि यार क्या हो गया, आइसक्रीम ही थी ना। तो अब्बू ने कहा अरे मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने पूछ लो इससे कि मैंने इसको डांटा है या मारा है, मैंने सिर्फ ये कहा कि बेटा ये क्या बात है, और उसको कहा कि इसको ना देना। मतलब अब्बा ने तो जहर है, पापा ने तो सेहत के हवाले से भी कहे ना, उनको तो जहर है। अगर आज मेरा भी बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह ताला मुझे मेरी बेटी अता करे, आमीन सुमा आमीन या इलाही रब्बिल आलमीन, बेटा अता करे या बेटी अता करे, बेटी अता करे तो अल नीम हर सकीना, बेटा हो तो अली अकबर इंशाल्लाह अज़ीज़। खैर मूविंग फॉरवर्ड, अगर मेरा भी आज अली अकबर हो या मेरी भी आज सकीना हो, तो शायद मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो दिन में 4-4, 6-6 आइसक्रीमें खा जाए, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने 3 दिन बात नहीं की। हाँ हाँ गाना बहुत मजे का लगा यार, गाना एंजॉय करते फिर आगे बढ़ता है।

कमल कह रही है आपका इमेज तो बहुत डिफरेंट है सबकी नजर में। वो कहता है कि तुमने देखा है सहरा में एक दरवेश, तुमने देखा है सहरा में एक दरवेश, तुमने अभी दरवेश में सहरा नहीं देखा।

बढ़ना है कातो अनजान, मौसम हुआ है बेईमान. Hit after hit, one after another. That's how I play music. That's how I mix music. Or should I say play with the music? अगले 5 से 10 मिनट में आपको कहीं और लेकर जाऊंगा जहां पर नफरतों कदूरतों का कोई काम नहीं है. उसके बाद फिर हम उस न्यूज़ की जानिब और फिर उसी न्यूज़ से होते हुए हम कब जिक्र की जानिब जाएंगे, कब हमारी आंख वजू कर लेगी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा. और उसी के दौरान फिर आपसे खुदा हाफिज़ कह दूंगा. मोहब्बत बहुत नायाब चीज़ है. चलते फिरते उठते अगर आपको कहीं मिल जाए तो कोशिश करें कि उसको साथ रखें या कोशिश करें कि उसके साथ रह सकें. मुझे आज किसी ने कहा कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, या किसी के हो जाएं या किसी को अपना लें, और आप तो दोनों ही नहीं करते. वो अलग बात कि शायर कहता है मैं भी तन्हाई से डरता हूँ कि खाके में बदहन आदमी कोई खुदा है कि अकेला रह पाए.

हम जैसे लोग सिर्फ मोहब्बत पे सिर्फ मोहब्बत पे कनात पसंदी से गुजारा नहीं करता, हमें कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ हमारा हो जाए। हाँ जानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे तो नार्सिसिज्म है, नार्सिसिस्ट होना है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, आप कह लीजिए जो भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस कुल कायनात में अगर एक शख्स हमसे मोहब्बत का इजहार करे और फिर अपने वजूद के साथ हमारे पास ना पहुंचे, अपनी रूह को हमारे हवाले ना करे, तो फिर क्या मोहब्बत, क्या मोहब्बत।

मैं तुम्हारी तमाम मुश्किलात का, मैं तुम्हारी तमाम मुश्किलात का मुकम्मल जवाब हूँ। सुनिएगा यार।

ये स्टैंजा सुनना जरा। परवीन शाकिर साहिबा कहती हैं कि गूब गूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कैसे कह दूं कि छोड़ दिया उसने मुझे, बात सच है मगर बात है रुसवाई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। और ये जुमला सुनिएगा यार, ये मिसरा सुनिएगा, तपती हुई पेशानी पर जब हाथ उसने रखा, तपती हुई पेशानी पर जब हाथ उसने रखा, उसने डिस्प्रिन और चाय भेजी है, उसने डिस्प्रिन और चाय भेजी है, पागल आकर मेरा सर क्यों नहीं दबाती। उसने तपती हुई पेशानी पर हाथ जब रखा, रूह तलक आ गई तासीर मसीहाई की।

एक राज की बात बताऊं आपको, चलो आज वो राज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। बाखुदा किसी अगर आपको किताब में मिल जाए, किसी मकाम पर मिल जाए, आज दो राज तुम्हारे सामने खोल के जा रहा हूँ। मैं जमीन से नीचे हुआ, जमीन से ऊपर हुआ, जिस दिन ये दो राज समझ में आ गए, तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, समझने पे आए तो शायद अभी समझ लेना, ना समझने पे आओ, ये रोशनी जब अल्लाह ने उतारनी हुई तुम्हारे दिलों पे जब उतारेगा, जमीन से ऊपर हुआ, जमीन से नीचे हुआ, मेरे लिए दुआ जरूर करना। हाँ, दो राज तुम्हें आज ऐसे देकर जा रहा हूँ, दो कायनात के राज तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अब गुफ्तगू को किसी और समत की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे, खुदा तुम लोगों की जवानी सलामत रखे, वालदैन को नसीब हो, खुदा तुम लोगों के नसीबों को अच्छा करे, खुदा तुम लोगों के वालदैन के लिए तुम लोगों को ठंडक बनाए। गुफ्तगू अब किसी और तरफ जा रही है। पहली सफ में आकर बैठे हैं जो जुमलों के खरीदार हैं। हाथ फजा में बुलंद करने वालों की खैर हो, हाथ फजा में खुदा करे अब बुलंद हो ही उसका, जिसको वहां से खैरात मिलनी हो, जिसका हाथ बुलंद होना पसंद उनको हो, जिसको गाजी के सदके में बाजू मिले हों। हाय हाय हाय, कुछ राज तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, एक अभी खोल रहा हूँ, एक प्रोग्राम में आगे चल के खोल दूंगा।

पहला राज अब से चंद लम्हात बाद तुम्हारे सामने रख रहा हूं, उसके बाद दूसरा राज तो उस मकाम पर तुम्हें लेके जाएगा जहां पर सारी रात ये कायनात तुम्हारे साथ मिलकर धमाल ना करती रहे, तेरा जिस्म रक्से बिस्मिल की मिसाल कायम ना करे, मैंने फिर अली की विलायत मानी नहीं। हाय हाय हाय हाय, आप तैयार हैं? मैं एक लम्हे सिर्फ अब आपके ऊपर नजर दुड़ाऊंगा, सबके ऊपर।

मैंने आपसे चंद लम्हात पहले कहा कि हमें सिर्फ मोहब्बत में कनात पसंदी शायद हमसे ना हो पाए, कोई शख्स चाहिए वजूद के साथ, रूह के साथ। राज की बात यहां पर यह है, महबूब के सामने सबसे पहले सर तस्लीम खम करने वाला हकीकत में वो होता है जिसकी जीत हो जाती है। जुमला रिपीट करूं, महबूब के सामने तलवार रख देने वाला वो शख्स होता है जो जीत की जमानत लेकर जाता है। किस जीत की? उसके दिल की जीत की। हाय हाय हाय, मसला ये है कि हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, हम सोना देकर पीतल खरीद रहे हैं, बताया नहीं ना किसी ने, समझाया नहीं ना किसी ने। मिसाल देता हूं, वक्त असर है, मैं नहीं जानता आप किस मकाम पर जाकर, आप किस लम्हे में, किस किस किस किस किस किस जगह पर सुनेंगे आप। हाय हाय हाय हाय, मैं आपके सामने रख रहा हूं गुफ्तगू, वक्त असर है, सलामत रहो यार, सलामत रहो, सलामत रहो। एक जुमला सुनकर नतीजे पे पहुंचने वालों की खैर हो, लेकिन मेरा मकसद, मेरी जिम्मेदारी हर उस शख्स को भी मंजिल तक पहुंचाना है जो किसी वजह से परवाज नहीं कर सकता। जिक्र उसका कर रहे हैं जो पितरस को परवाज करवाए। अब जो लोग तारीख के मुतलाशी हैं, तारीख का जौक रखते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, पतरस कौन था, जाएं जरा पढ़ें जाके, पतरस कौन था, पर कहां गए, पर मिले कैसे, किसने कहा उड़, पतरस ने किसको जाकर कहा कि गलती मुझसे हो गई है, मेरे पर ले लिए गए हैं। आए हाय हाय हाय हाय हाय, मैं कह रहा हूं कि मैं गुफ्तगू खुदाई गुफ्तगू ऐसे है जैसे आप तलवार की नोक पर खड़े होकर करें। मैं घबरा कर नहीं कर रहा, आप घबरा के ना सुने, मैं जुमलों का नहीं अपने हरफों का जामिन हूं। पतरस ने किसको कहा, गुस्ताखी हो गई मुझसे, पर ले लिए गए सजा के तौर पर, किसने उसको कहा उड़, कहा मेरे पर नहीं है बादशाह, कहा उड़, कहा मेरे पर नहीं है बादशाह, कहा उड़। पितरस ने परवाज भरने के लिए बाहों को बुलंद किया, मलाइका ने देखा कि ये परवाज आज किसी मलाइका की तो नहीं है, पितरस तू परवाज कर रहा है, तेरे तो पर ले लिए गए थे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जाग कर आओ मेरे साथ यार। मैं साथ साथ फेसबुक देख रहा हूं, इंस्टा देख रहा हूं, आप मेरे साथ हैं कि नहीं है।

वो अलग बात के जिसके कहने पर पतरस को पर मिले, एक मकाम पर जाकर लोगों ने उसको भी परों से नवाजा। जिन परों को देखने के बाद उसकी सवारी का नाम तब्दील किया गया। मैं फजाइल नहीं, मैं मसाइब के जमले पढ़ रहा हूं। आपकी आंख का मैं जामिन हूं, आपकी समातें मेरी तरफ हो, आपका आपका दिल मेरी तरफ हो, आपकी आंख से आंसू न गिरे, मैं आपका नौकर हूंगा, मैं आपका मुजरिम हूंगा। आप मेरी बात गौर से सुने, बात दिल पे जाए। बड़ा दुनियादार है, बड़ा अमीर है वो आदमी जो ये गुफ्तगू सुनकर आंख नम ना करे। हाथ दिल पर रखें, दिल पत्थर का तो नहीं। जुमला समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद ना हो, बस फिर मेरा पढ़ना, मेरा लिखना, मेरा कलम, मेरे अल्फाज परेशान खड़े हो गए आपको देखेंगे। अब मेरे पढ़ने का कतल है अगर ये जुमले भी अब आपके सामने ना पेश हुए तो, ये जुमले भी आपकी समातों को ना झंझोड़ सके तो मेरे पढ़ने का कतल है फिर। वो पर दिए जिस पर को हासिल करने के बाद उसकी सवारी का नाम तब्दील हुआ। मुर्तजिस से जुलजना, जुलजना परों वाला घोड़ा। कौन से परों वाला घोड़ा? जुलजना तो नाम नहीं है, नाम तो मुर्तजिस है, तो जुलजना क्या है? जुलजना परों वाला घोड़ा। परों वाला घोड़ा कैसे? तीर इतने लगे थे कि दूर से कोई देखे तो कहता था कि घोड़े के पर निकल आए हैं। लेकिन मौजूए गुफ्तगू इस वक्त ये नहीं है। मौजूए गुफ्तगू हमने जहां से शुरू किया था वो ये है कि जो तलवार रख दे जीत उसकी है। कैसे? ये मैंने आपको आज साबित करना है। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं।

वक्ते असर है, तीन दिन का भूखा है, प्यासा है, 9 लाख की फौज में है, लेकिन बेटा उसका है जिसको कहा गया कि तेज सवारी रखें। मौला ये सवारी आपके शायाने शान नहीं, फरमाया तेज सवारी दो लोगों को चाहिए, जो मैदान से भागना हो जिन्होंने, या जिन्होंने शिकार के पीछे जाना हो। मैदान से मैं भागता नहीं, मैं गैरे फरार हूँ, मैं हैदर करार हूँ, और मुझसे कोई बच कर निकल जाए मैं पीछे से पकड़ूं ये हो नहीं सकता, जो मेरी गिरफ्त में आए और निकल जाए ये हो नहीं सकता। बेटा उसका है, हमला किया, फौजें भागने पर मजबूर हुई, सदाई हुसैन, बस मैं राजी हुआ, इम्तिहान खत्म, तलवार नयाम में। हुसैन ने वहीं तलवार रख दी, जीत किसकी हुई। लेकिन ये हिम्मत लाए कौन, महबूब के सामने सर तस्लीम खम करे कौन। पहला राज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, महबूब के सामने सर तस्लीम खम हो तेरी जीत है, जाहरी तौर पे भी हार तेरी जीत है। सर तस्लीम खम ना हो तू जीत जाए बा खुदा, जाहरी तौर पे तू जीत गया, असल हकाइक के तौर पे तू हार गया। आप लोग सवाल करते हैं ना, अभी भी मैं बहुत सारे मैसेजेस थे मैंने इंस्टा पे, उनको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो फिर सम टाइम सेल्फ ब्रैगिंग भी लगती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा लगता है कि यार शायद पता नहीं जान के यही मैसेजेस पढ़ रहा है जिसमें अपनी तारीफ है, तो कुछ मैसेजेस आए कि डर नहीं लगता एंड ऑल दैट। मैं छोड़े, मेरी बात को छोड़ें, आज मैं आपको बताऊं कि अली वाले कैसे होते हैं। यार मेरे साथ जाग कर आएंगे तो आएंगे, अगर इन लम्हात में, मैंने पूरे प्रोग्राम में आपको नहीं कहा मेरे साथ चले, अभी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि मेरी बात जा रही है, आवाज जा रही है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मेरी मेहनत ताकि किसी मकाम तक पहुंचे। इन लम्हात में भी अगर आपके हाथ नहीं चलेंगे तो फिर कब चलेंगे। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है आपसे, और सवाल ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अली वाले कैसे होते हैं। आपसे बहुत सारे लोगों का सवाल है ना, अली वाले कैसे होते हैं। इबादत अपनी जगह पर, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। अली का मानने वाला हो नमाज को हकीर जाने हो ही नहीं सकता, उसने अली को समझाई नहीं। रोजे को हकीर जाने, उसने अली को समझाई नहीं। जक़ात को, खुमस को, जितने भी तमाम तर अरकान इस्लाम है, लेकिन मिजाज कैसा होता है, पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये मैं आज आपके सामने रखूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखता हूँ, शायद ये बात मैंने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं की, आज करूंगा। आपको मयार समझ में आएगा कि इंसान किस मयार पर होता है, ये पैसा, ये दौलत, ये चीजें, अच्छा है आप अच्छी लाइफ गुजारें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आप मेहनत करें, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी गाड़ी रखें, अच्छा घर रखें, अच्छा लिबास पहने, अच्छा परफ्यूम लगाएं, अच्छी घड़ी पहने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अली वाला होने का ताल्लुक पैसे या ना पैसे होने वाले से नहीं है भाई, अली वाजिब है हर एक ऊपर 24 घंटे। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इमेजिन करना कि अगर वाकई विलायत किसी को समझ में आ जाए तो वो बंदा किस मकाम पर होता। कायनात का राज तेरे सामने रख रहा हूं,

ये वाकया आज से कोई 3-3.5 साल पहले का, और मुझे हैरत है कि वाकया मैंने आज से पहले क्यों आपको नहीं बताया। कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अमानतन होती हैं, वो जिस दिन जिस लम्हे जिस शख्स तक पहुंचनी हो वो उसी दिन आती हैं, और मैं बहुत हैरान हूं। और अगर मैंने सुनाया है और अगर मैं भूल गया हूं तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो कि मुझे याद रहते हैं जब मैं सुनाता हूं। लेकिन अगर ये मैंने सुनाया और मुझे याद नहीं है तो भी मुझे बहुत हैरत है, और अगर मैंने नहीं सुनाया फिर तो बहुत ज़्यादा हैरत है। ये वाकया आज से कोई 3-3.5 साल पहले का है, और मुझे उस दिन समझ में आया कि असल अमीर कौन है। जब अली आपके अंदर सराइयत करते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी का क्या मयार होता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वाकया है 3-3.5 साल पहले का। एक इदारा था जहां पर मैं काम करता था, और उस इदारे के एक चौकीदार थे जिनको हम गार्ड कहते हैं, वॉचमैन कहते हैं। एक तो होता है ना प्रॉपर गार्ड, कंपनी का गार्ड होता है जो कि मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म में और प्रॉपर जो है वो अपने पूरे अटायर में होता है, ऐसे नहीं। वो मतलब ऐसे बाबा जी थे कि उनको बस एज अ गार्ड रखा था। वो चाय भी ले आते थे, वो गार्ड भी बन जाते थे, वो माली भी बन जाते, मतलब वो इस तरह का उनका एक सिस्टम था। मैं इदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो खैर उस इदारे में काफ़ी दिनों से थे, काफ़ी अरसे से थे। तो जब मैंने वहां पर मेरा आना जाना शुरू हुआ तो मेरी उनसे ज़रा दोस्ती हो गई, हालांकि वो उम्र में काफ़ी फ़र्क था। वो तकरीबन उस टाइम पे मेरा ख्याल से 50-55 के होंगे, 50 से तो ऊपर ही होंगे, और मेरी उस टाइम उम्र जो है वो तकरीबन कोई 27-28 साल थी। हुआ ये कि हमारा एक साथी था, वो फौत हो गया, उसी इदारे में काम करता था, वो फौत हो गया। और हमारे यहाँ एक रूल था कि अगर कोई फौत हो जाए ऑन ड्यूटी तो फिर उसकी कुछ मरात होती हैं जो कि उसकी बेवा को दी जाती हैं, उसके बच्चों को दी जाती हैं, ताकि ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस है तो उस लॉस से चलो किसी हद तक इकोनॉमिकली जो है वो ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। चलो जो एक इमोशनली एक सफ़र है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली इतना सफ़र ना करना पड़े। तो वो एक अमाउंट होती थी, एक खतीर रकम होती थी जो कि उसकी बेवा को या उसके बच्चों को दी जाती थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, उन बाबा जी का हुलिया ये होता था कि वो शलवार कमीज पहनते थे, और मैंने उनको 3 रंग की शलवार कमीज में देखा। मैं तकरीबन ज्यादा अरसा तो नहीं रहा वहां पे, तकरीबन 1-1.5 साल ही रहा, लेकिन मैंने उनको 3 कलर में ही देखा, एक स्याह यानी कि काला, सफेद और एक लाइट ब्लू सा जो कलर होता है। इन 3 शलवार कमीजों के अलावा मैंने उनको कोई और कलर पहने नहीं देखा, इवन ईद पर भी नहीं देखा। स्याह, सफेद और एक लाइट जो स्काई ब्लू सा कलर होता है, उस तरह की उनके पास शलवार कमीज थी। सर पर टोपी रखते थे, हाथ में तस्बीह होती थी, और नीचे पेशावरी चप्पल पहनते थे, और एक उंगली पे उन्होंने हकीक पहना होता था, हाथ में कलाई घड़ी होती थी, चेन वाली जो होती है, और हर टाइम वो तस्बीह घुमाते रहते थे। मतलब फॉर एग्जांपल उनको किसी ने बुलाना भी है ना, चचा चचा, मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, अगर उनको किसी ने बुलाना भी है कि चचा, तो वो उसके काम भी कर रहे हैं, फाइल यहां से उठा के वहां भी लेके जा रहे हैं, चाय भी ला रहे हैं, बाकी मामला भी कर रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं, वो तस्बीह चलती रहती थी उनकी। तो मैं अक्सर उनके साथ बैठता था, हम बहुत सारी बातें किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, एक काम के सिलसिले में मैं वहां पर गया था। अब एक्चुअली मैं अगर बता दूंगा कि मैं किस सिलसिले में वहां पर था तो फिर बात बिल्कुल ही ओपन हो जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता। तो बाहर क्या है, मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन जाया करता था, चले इतना बता देता हूँ। सो उस दिन मेरा दिन था जाने का, वहां पर होने का, जिस दिन मैं वहां पर मौजूद था। तो वहां पर मैंने एक शोर सुना, बहुत भयानक शोर। शोर एक औरत की चीखने की आवाजें थी, इतनी दर्द भरी चीखें शायद आप इमेजिन ना कर सके, और मुझ जैसा आदमी जो कि बहुत जल्दी घबराता नहीं है, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकलना क्या होता है। आप जानते हैं वो चीखें किस औरत की थी और क्यों थी?

मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं पार्किंग लॉट से चंद कदम के फासले पर वो कमरा था जहाँ मैं बैठा जाके। मैंने अपना फ़ोन अभी टेबल पे रखा था, अपना पर्स अपनी पैंट की बैक पॉकेट से निकाल के अभी टेबल पे रखा था और सीट के ऊपर टेक लगाई थी कि मुझे किसी औरत की चीखने की आवाज़ें सुनाई दें। जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद था वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, फटाफट उठा, मैंने अपना फ़ोन लिया, मैं बाहर गया। जिस सम्त से चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी मैं उस सम्त भागा। आहिस्ता आहिस्ता उन चीखों की आवाज़ का ताकुब करते हुए मैं एग्जैक्ट उस कमरे तक पहुंच गया जहां से उस औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो औरत कोई और नहीं, वो औरत वही औरत थी जिसके हस्बैंड का इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ था। हमारा साथी था, वहीं पे काम करता था, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं था, मेरा कोलीग उस तरह से नहीं था कि मेरे साथ काम करता हो, लेकिन उसी इदारे में एक और डिपार्टमेंट में काम करता था, तो गाहे गाहे मुलाकात रहती थी उससे। बार कैफ ये चीखें उसी शख्स के बेवा की थीं जिसके हाथ में एक नन्ना बच्चा था। एक बच्चा उसने गोद में उठाया था और एक बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ रखी थी और वो औरत चीख रही थी। चीखते हुए वो उस कमरे से बाहर निकली और उसके चीखने में जो कहीं कहीं दबे दबे अल्फाज वो कह रही थी वो ये थे कि मुझे महीना हो गया है, मैं रोज़ आती हूँ, सुबह 8 बजे इस ऑफिस में बैठती हूँ और 6 बजे तक बैठी रहती हूँ, मेरे खावंद के वाजिबुल अदा जो मेरा हक है वो मुझे नहीं दिए जा रहे हैं, मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे रुसवा किया जा रहा है, मुझे गैर ज़रूरी तौर पर इंतज़ार करवाया जा रहा है। मैं इन्वर्टेड कॉमास में बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है कि एक महीना हो गया है मुझे मेरा हक नहीं दिया जा रहा है, एक मेरा खावंद मेरे सर पर नहीं रहा, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई, मालिक मकान सर पर खड़ा है, घर में खाने के वांदे हैं और यहाँ पर एक महीने से ज़ायद हो गया है मैं सुबह 8 बजे यहाँ पर आती हूँ अपनी फाइल लेके और 6 बजे तक बिठा बिठा कर वो कहते हैं बीबी नहीं हो सका कल आना। वो ये बात कहते हुए, बददुआएं देते हुए, आंसू बहाते हुए उस कॉरिडोर से निकल रही थी। इससे पहले कि मैं ये सोचता कि मैं इस औरत के लिए क्या कर सकता हूँ या मैं उस शख्स से बात करता जो उस कमरे में, एक आलीशान कमरे में एसी लगाकर एक बेहतरीन सीट कंफर्टेबल रोटेटिंग चेयर के ऊपर बैठा था और उसके लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई औरत उसके कमरे से शोर मचाती हुई निकल रही है। इसी असना में मैंने दूसरी तरफ से एक शख्स को आते देखा, यहाँ से वो औरत जा रही थी और दूसरी तरफ से एक शख्स को आते देखा। अब जानते हैं वो शख्स कौन था।

बाखुदा दुनिया को पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी दौलत मौजूद है और वो हासिल नहीं कर रहे हो। खुदा आपके दिलों को मनवर फरमाए जो इस दौलत को अपने दिलों में समेटे हुए हैं। आपके इश्क की वजह से थोड़ा बहुत शायद मुझे भी मिला हो, खुदा की कसम। जमा मकान से आजाद हो जाते

मेरा नाम जिशान नासिर है, आप इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिशान नासिर 26 लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26, यहाँ पे आप जाएं अभी अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए, मैं भी शामिल कर रहा हूँ।

सलामत रहे भाई, आप सब सही जवाब दे रहे हैं। सिर्फ जुल्फिकार थी, अब जुल्फिकार का सुन लें। एक शख्स आया, कहा मौला कुछ मांगू देंगे? कहा मांगो। वो क्या जानता था कि सवाल उससे किया जा रहा है जो सवाल का मोहताज नहीं, और वो तो बिना मांगे देता है, बिना सवाल किए जो चीज उसके पास हो हदिया कर देता है, तो मांग के क्यों नहीं देगा? कहा मौला जुल्फिकार चाहिए। एक लम्हा सोचे बिना मौला ने कहा ले लो। बस मैं खत्म कर चुका हूँ, गुफ्तगू खत्म कर चुका हूँ। बस आखिरी दो चार फजाइल के जुमले हैं, उसके बाद खुदा हाफिज आपसे। मेरा पढ़ना आखिरी हो, आपका सुनना आखिरी हो, जिंदगी का पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। बस आखिरी दो तीन जुमलों की तवज्जो, उसके बाद खुदा हाफिज है। मसाइब खत्म कर चुका, फजाइल के जुमले पढ़ रहा हूँ। कहा मौला जुल्फिकार चाहिए, एक लम्हा सोचे बिना कहा ले लो। खुश हुआ वो जुल्फिकार ली, दरख्त के पास पहुंचा, जरब लगाई, दरख्त को कुछ भी ना हुआ। हैरान हुआ, कहा मौला ये जुल्फिकार वही है? मौला ने कहा कौन सी? कहा मौला मरहब का शिकार, अंतर का शिकार, हारिस का शिकार, खैबर का किला फतह, ये जुल्फिकार वही है? कहा हाँ वही है। कहा नहीं मौला, मैंने तो जरब लगाई है दरख्त पर, दरख्त को कुछ नहीं हुआ। मौला मुस्कुराए और कहा कि बात जुल्फिकार की नहीं, अली के हाथ की है। जुल्फिकार भी तब जुल्फिकार है जब अली के हाथ में हो। भाई यार क्या कहने।

ओके जी, कुछ मैसेजेस आपके शामिल करते हैं। और फायजा अली हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं जिशान बर्थडे के प्रोग्राम में आपको लाइव देखा, ट्रस्ट मी ड्यूरिंग दैट टाइम आपके एक एक एक्ट को फॉलो किया और देखा, ट्रस्ट मी यू हैव सम ऑसम पर्सनैलिटी एंड यू हैव सम अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग के आगे जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड जेड अमेजिंग पर्सनैलिटी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो मेरा ख्याल से बंदा कुछ ना करे तब भी ज्यादा

आजकल ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, मेरी प्लेलिस्ट में बहुत चल रहा है, मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। और मेरा ख्याल से शायद एक ये गाना, एक अल्फाज गाना, ये दो गाने मेरी गाड़ी में आजकल ज़्यादा चलते हैं। और आप लोगों ने पहले सुना होगा, नहीं सुना तो शफकत अमानत अली खान साहब की आवाज़ में, ज़रा इसको सुनिएगा, बहुत मज़े का गाना है। एंड आई जस्ट लव दिस ट्रैक, ज़रा सुने, फिर इसके साथ ही हम आपसे अल्लाह हाफिज़ भी करते हैं।

जिंदगी ने सांस सोने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखना. आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है. फीडबैक देने के लिए जिशान नासिर लिखोगे इंस्टा पे, मैं आपको मिल जाऊंगा. एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26. इसी के साथ मुझे दो इजाजत. जिंदगी ने सांस सोने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद. जिशान नासिर साइंस आउट. तुम लोगों का पुखी जा रहा है. बाय बाय. अल्लाह हाफिज. जाओ.

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।